गावन तुदनो पवन पाणी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुपत लिख जानन।

गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माशु पायाले। गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले। गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे। गावन तुदनो खांड मंडल।

शरया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल तरया जन नानक बल बल सब बल जाइए तेरा अंत ना पारा वरिया।

अगम अपारा सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर।

क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निहचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरत जी तू आपे करै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई।

तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया।

श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा।

है। आप हाथ दय मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तो जजू करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कार विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा।

काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चिटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा धारत तब देह अपारा। जब अकरख करत हो कबहू, तुम मैं मिलत देह धार सब हूँ।

भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको पेव न पावत भेदा।

अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी ओत पुज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो संक्र एकैठा।

असेख संगरो दोष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करूरण काता जी अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हव मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न आय है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो ताके पाप तनक मुहर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा।

दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वादाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्दोता गावह हरि केरा मन जिने वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा

तेरा है, घर ता तेरा है, सब किशो है, जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिन कह मन वसया, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहेब, क्या नाही घर तेरा है, साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो, जिस दिया ए वडियाइया, कह नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित घर तारिया, पंच दूत तुद वासो कीते, काल कंटुक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे, कह नानक तै सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे, दुख

साध जना कै संग भव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बेदारियन। तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। तिस सा

प्यारी सतसंगत जी, गुरु महाराज जी ने बेअंत बख्शिशां कीतियां। अमृतपाल तो एक जूम मीटिंग विच संगत करके गुरु महाराज ने ऐसी बख्शिश की कि हुण जदों कीर्तन की सेवा प्राप्त हुई तो दास दे मन विच आया, गुरु महाराज ने आप प्रेरणा बख्शी कि बेअंत बेअंत वाहिगुरु दे भगत जन उस दे गुणां दा गायन गा रहे कर रहे हैं, कि क्यों ना उन्हां शब्दां दा ही गायन होवे, कीर्तन होवे। तो सतगुरु जी ने मेहर की, सवेर नूं जपजी साहिब दा पाठ इत्थे हुंदा है तां वी सोदर विच सतगुरु जी ने बेअंत उन्हां दा जिक्र कीता है जिहड़े गा रहे हैं। गावन तुदनों पवन पाणी वैसंतर, शाम नूं फिर रासा विच फिर पढ़दे आ। पर कमाल की गल की गुरु साहब कहिंदे ने होर केते तुदनों गावन, मैं इन्हां दा जिक्र कीता, इन्नी लंबी लिस्ट दित्ती गुरु नानक देव महाराज जी ने। इस वक्त गुरु ग्रंथ साहब च तीन वारी आया, जिन्होंने सहज पाठ करते हैं अखंड पाठ करते हैं उन्होंने पता है तीनों वारी थोड़ा थोड़ा फर्क है। सो असी हुण राज साहब के पाठ विचों पांच तुकां का कीर्तन करांगे, पांच तुकां का जिन्हां विच गुरु साहब ने करदियां उत्थे पहुंच के कहिंदे ने होर केते तुदनों गावन, होर पता नहीं कितने लोग तैनू गा रहे ने उसे मैं चित्र ना आवन। कहिंदे मैनू मेरे चेते च नहीं हन, मैनू नहीं पता, पता ही नहीं मैनू, कहिंदे मेरे चेते च नहीं हन। होर किते तुदनों गावन से मैं चित ना आवन, नानक क्या विचारे, विचारन नानक की विचार कर सकता है। वाहिगुरु तेरे गुणा दा तू ही जानदा है, तू बेअंत है, बेअंत है ऐसा साचा। आओ गुरु माता कृपा करन, असी गाते हाँ उसकी उस्तत पढ़ते हाँ, कथा सुनते हाँ, विचार करते हाँ, पर प्रभु दे गुणा नूं मूंह तो बोलना, गाउना, सुनना करना नाल वखरी चीज है। अंदर वसा लेना गुणा नूं, ओ पागां वालियां नूं चीज प्राप्त हुंदी है। सतगुरु जी कहिंदे ने सही तुदनों गावन जो तुद पावन। दरअसल रियलिटी ए है कि ओही तेरे गुण गांदे ने। सही तुदनों गावन जो तुद पावन, जेड़े तैनूं चंगे लगदे ने, जिहड़े गुण गा रहे ने किसी होर मनोरथ दे नाल, उन्हां दा स्वार्थ कुछ होर है। सतगुरु जी कहिंदे ओ पता नहीं तेरे दर ते परवान हैन के नहीं, पर सही तुदनों गावन जो तुद पावन, जदों तैनू चंगे लग गए। पर चंगे किहड़े लगदे ने, रत्ते तेरे भगत रसाले, रत्ते तेरे भगत रसाले। आओ रल के इस तुक दा आनंद माणिए, फिर पांच तुकां दा कीर्तन होर नाल होर गुरु महाराज कृपा करन शब्दां दा।

ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना,

मरण नमूरत पुष्या पुष्यी थे तनवार। जगत गुरु धन गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह जगत जलन दिन तार दें ठार दें जीवां नूं नाम बाणी दे लड़ लाउंदे आ नाम दा छट्टा मारदे आ। सच्चे पातशाह जी एक दिन विराजमान ने एक अस्थान ते सिखां ने बेनती की महाराज सच्चे पातशाह कुछ लोग वहमां भरमां विच पै के सियाणियां दे कोल जांदे ने मुहूर्त कढ़ाउंदे ने अज जाइए कि ना जाइए आप कम करना करिए कि ना करिए करना चाहिदा कि नहीं करना चाहिदा कि जाना चाहिदा कि नहीं जाना चाहिदा थितां बारां दा विचार करके तुरदे ने। ते मारे की आप जी दा ख्याल है। वैसे भी जदों असीं विचरदे आं ते कई वार संगत सवाल करदी है कि विआह शादी आदिक बच्चियां दे सार्थ करदे आं इच पंचकां दा ते जां गंडसल आदिक चीज़ां कुछ ऐसियां इहदा विचार करना चाहिदा है। नहीं भाई, गुरमते च इहदा कोई विधान नहीं। कोई भी किसी तरह का वहम भरम गुरु महाराज जी ने सानू दस्या ही नहीं। खालसा खास कहावै सोई जाके हिरदे भरम न होई, भरम भेद ते रहे न्यारा सो खालस सतगुरु हमारा। तो गुरु ग्रंथ साहिब का फरमान है सत्संगियो थित्ती वार सेवे मुगद गवार। जो गुरु का सिख हो के थित्तां ते वारां दी विचार करदा महामूर्ख बंदा हुंदा प्यारिओ। मैं नहीं कह रहा, गुरबाणी सच्चे पातशाह जी का फरमान थित्ती वार सेवे मुगद गवार। इसलिए गुरु का सिख गुरु अगे अरदास करे। कोई भी कार्य आरंभ करना सच्चे पातशाह अगे अरदास करके कार्य आरंभ करे। तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास, ताको बिघन न को लागे जाके प्रभ अगे अरदास। इस वास्ते इन्हां चीजां का गुरमत च कोई विधान नहीं। गुरु नानक देव जी ने बेनती की महाराज कि इन्हां चीजां की कोई विचार करनी चाहीदी है। तो गुरु जी कहण लगे मरन ना मूरत पुछया। भाई मरन लग्या किहड़ा कोई थित वार पुछदा, किहड़े वार जाना। ना जमदे समय थितां वारां दा कोई विचार, ना समय दा विचार। शाम नूं जन्म पिया, सवेरे जन्म पिया, दुपहरे जन्म पिया, ना मौत दा समां कोई विच्छा संगीओ। फिर असी क्यों विचार करिए कि 12 बजे तो पहला भोग पाउणा जां बाद दा पाउणा। जी भोग 12 बजे तो बाद नहीं पाउणा खुशी दा, कई लड़ पैंदे ने भाईआं नाल। सत्संगी कोई गुरमत विच विचार नहीं। बड़ी वार इस चीज़ां दे उत्ते विचार चर्चा चली है। वो सिर्फ यह हुंदा है कि भैण भरा सज्जण मित्र जिहड़े दूर दराडे तो आ जाते हैं सारे इकट्ठे हो जाते हैं सोक दे समय उत्ते, फिर अपने घरों टाइम सिर चले जाते हैं। जो वाहिगुरु ने नहीं ये बनाई चीज़, मरन लग्या कोई थितवार समां है ही नहीं, जन्म लग्या है ही नहीं। कोई सवेरे अमृत वाले जाम पिया कोई 12 बजे के, एक बजे कोई 2 बजे कोई 3 बजे, तो असी विचारा क्यों करिए सत्संगी। सो इसलिए सच्चे पातशाह कहते मरण ना मूरत पुछया। जिवें मरन लग्या जीव कदे भी, मूरत का अर्थ है मुहूर्त, मुहूर्त का अर्थ है सत्संगी दो कड़ियां दा समा। इत्थे भी ख्याल करियो कि जे मम्मे दलैंकड़े रारा तत्ते सियारी पाठ आ जे उदारथन दा है मूरत, होंद हस्ती अकाल मूरत, उत्थे तत्ते सियारी लगी होएगी। गुर की मूरत मन में ध्यान, उत्थे भी तत्ते सियारी लगी होएगी। जिथे समय की गल आ जाती है मुहूर्त की, उत्थे मम्मे दलैंकड़े रारा तत्ता आएगा दो कड़ियां दा समा। मम्मे दलैंकड़े रारा तत्ते उंकड़ा जे एक कड़ी दा समा। जिवें माह दिवस मूरत भले, उत्थे तत्ते नूं उंकड़ा आएगी एक कड़ी दा समा। सो ये गुरबाणी दा एक निजम है। सच्चे पातशाह कहिंदे मरन ना मूरत पुछया। जिवें मरन लग्या कोई भी मुहूर्त नहीं पुछदा, अज कड़ा मुहूर्त है चंगा कि माड़ा है। पुछी थित ना वार, ना जी मरन लग्या थित पुछदा ते ना वार पुछदा है। अज की वार है मरां के ना मरां, अज केड़ी थित है मैं जावां के ना जावां। जे मरन लग्या ते जन्म लैण लग्या नहीं पुछीदा, ते फिर आपां अगो पिछों क्यों विचार करिए इन्हां चीज़ां दी। इक नी लद्या इक लद चले, कई ते कहिंदे दुनिया तों लद्या लद गए,
ਇੱਕ ਲੱਦ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਲੱਦ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੀ ਬੱਧੇ ਭਾਰ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਬੰਨ ਲਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਫੌਜ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਨਗਾਰਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਫੌਜੀ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ, ਕੋਈ ਤੁਰੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਭਾਰ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਬਿਲਕੁਲੋਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਈ ਸਾਖਤੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਲਸਕਰ ਸਣ ਦਮਾਮਿਆਂ ਛੁੱਟੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ

वै नम है अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ कल कलेश तन माहि मिटावौ सिमरौ जास विसंबरिक नाम जपता गंत निक वेद प्राण सिमृत सुदाख्यर किन्ने राम नाम इक आख्यर किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी न आवै काकी एक दर्श तुहारू नानक उन संगमुहे उदारू सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाउ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होए सुफला प्रभ कै सिमरन सुफल फला से सिमरै जिन्हें आप सिमराए नानक ता कै लागू पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिदमाहि समाए प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दर्शन दसना प्रभ को सिमरै से तनवंते प्रभ को सिमरै से पतवंते प्रभ को सिमरै से जन परवान प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे प्रभ को सिमरै से सर्व के राजे प्रभ को सिमरै से सुखवासी प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगर वाला प्रभ को सिमरै से पर उपकारी प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरह तिन आनंद कनेरे प्रभ को सिमरह बसह हर नेरे संत कृपा ते अंजन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभ कै सिमरन कारज पूरे प्रभ कै सिमरन कबहु ना झूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सह समानी प्रभ कै सिमरन ने चले आसन प्रभ कै सिमरन कमल विदासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन कांत न पार सिमरह से जन जिन को ब्रह्मया नानक तिन जन सरनी पाया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद उपाए हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीचों कुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बजाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाद अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जय महाप्यान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तीर चलै जय मुश्किल हो वैत पारी हर को नाम किन माह उदारी अनिक पुनः चरण करत नहीं तरह हर को नाम कूट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख गनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनिक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत आघावै जे मार गयो जात केला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याइयै नानक गुरमुख परम गत पाइयै छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तह पार पराही
अनिक बिगन जाया ही संगार है, हर का नाम तत्काल उदार है, अनिक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हो मैला मलकब न तो वै, हर का नाम कूट पाव कुवै, ऐसा नाम जपू मन रंग, नानक पाई है साध कै संग, जे मार के गन जाहि न कोसा, हर का नाम हा संग तोसा, जिह पै डैमांद गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहा पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पछानू, जय महा प्यानु तपत वो कामु, तय हर के नाम की तुम परछाम, या त्रिखा मन तुझ आकर खै, तह नानक हर हर अमृत बरखै, भगत जना की बर्तन नाम, संत जना कै मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उतरे जनकूट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कुमात, हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मंतन रंग रत्ते रंग कै, नानक जन कै बिरत बबे कै, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन को तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाही बियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै मालिक जीना, हर तन जन कुआ प्रभ दीना, हर हर जन कै उठ सुतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे, पार जात्यो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लत्था, नाम की महिमा संतरित वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम त्याई है, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए, श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्व टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल, अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग वन मध्य प्रिया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुण दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कराती, व्रत नेम करे बहु पाती, नहीं तोल राम नाम विचार, नान गुरमुख नाम जपिय एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीव, महा उदास तपिसर थीव, अग्न माहि होमत प्राण, कनिकसु है वर भूम दान, न्यौली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजमत साधन, निमक निमक कर शरीर कटावे, ताओ पी हो मैं न जावे, हर के नाम समसर कछ नाही, नान गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीरथ दे छुट्टै, गर्भ गुमान मन ते हुट्टै, सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबू न बिखे अटरै।

सो तुम मात पिता हम बारक तेरी तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत उच्चे ते उच्चा भगवंत सगल समग्री तुमरे सोत्र तारी तुम ते हो स्वाज्ञाकारी तुमरी गातमित तुम ही जानी नानक दास दा कुर्बानी श्लोक दीन हार प्रभ छोड़ कै लागे अनुसुआए नानक कहु न सी जई बिन नावै पत जाय अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावै एक वस्तु कारण बिकोट गवावै एक भी न दे दस भी हिर ले तो मूड़ा कहु कहा करे जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको की जय सद नमस्कारा जा कै मन लागा प्रमीठा सर्व सुखता हूँ मन उठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया गंत साहु अपनी दे रास खात पीत बरतैन दोलास अपनी अमान कछ बाहुर सावले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुर उसका विश्वास न होवै जिसकी वस्त सिया गह राखै प्रभु की आज्ञा मान मत है उसते चौगन करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिर की छाया स्यो रंग लावै ओ बिन सहु मन पुछतावै जो दिसै सो चालन हार लपटे उते अंध अंधार बटाऊ स्यो जो लावै नेह ताको हाथ न आवै के मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया मिथ्या होमै ममता माया मिथ्या राजोवन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती शुभ अस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या पशु पर कर्त गुमान अस्थिर भक्त साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है मिथ्या नित्र पेखित पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन्नी पर उपकारा मिथ्या बास लेख विकारा बिन बुझे मिथ्या सफय सफल देह नानक हर हर नाम ले बिरथी साकत की यार जा साच बिना कहूत सूचा बिरता नाम बिना तनंद मुखावता कह दुर्गंध बिन सिमरण दिन रैन बिरथा बिहाय मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोविंद भजन बिन वृथे सब काम ज्यो कृपन के निरार्थ धाम धन धन तेजन जे कट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कमावत मनी प्रीत मुखो गंडलावत जन नहार प्रभु प्रवीन बाहर भेख न काहू भीन अवर उपदेश आप न करै आवत जावत जन मैं मरे जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक कुन जन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप मानै आप पाप करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव से अनुप सगल ते रहत सब खचाने तुम की रहत जिस पावै तिस लय लड़लाए थान थनंतर या सुनाए सु सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहंग मेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदि जे प्रसाद छत्ती अमृत काहे तिस ठाकुर कौ रख मन बाहे जे प्रसाद सुगंध तन लावै तिसको सिमरत परम गत पावै जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मने अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्या कतवर लुभावै जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ताका जस गावी जय जे प्रसाद तु सब को मानै मुक्ता को जस रसन बुकानै जे प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जप दर गै मन पावै नानक पद सेती कर जावै जी प्रसाद आरो कंचन देही लिव लाओ तिस राम सुनेही जी प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत
जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके जे प्रसाद तुझको न पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे जे प्रसाद पाए दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपुखन पैरी जय मन तिर सिमरत क्यों वालस की जय जे प्रसाद अश्वहस्त असवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राख पुर प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठ सत्य सत्याई तिसे त्याई जुवे कलख इहा उहा नानक तेरी रखै जे प्रसाद करै पुन बहुदान मनाट पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी जे प्रसाद तेरे सुंदर रूप सो प्रभु सिमरव सदा अनूप जे प्रसाद तेरे निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहे गुरु प्रसाद नानक जस कहे जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद पिखे बिस्मार जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सह समाव है ऐसा प्रभु त्यागवर कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तुम प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ तू ताको जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावें साच रे मन मेरे तू ता शिवराच जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सु प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मातु उत्तम होए सर्व निदान प्रभु तेरी माया पू कछु न किन्हु लया जित जित लाभ हो तित लगै हर नाथ नानक इन कह कछु न हाथ सुलो अगमगाद पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साजना की अचरज कथा सुबदी साध के संग मुखु जल होत साध संग मल सगली कोत साध के संग मिटै अभिमान साध के संग प्रगटै सुज्ञान साध के संग बुझै प्रभु नीरा साध संग सब होत नबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्मा है सुमानी साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ल साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुई सब की रेन साध के संग मनोहर बहन साध के संग नकत उतावै साध संग स्थित मन पावै साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै सो महापनीत साध संग किस्यो निबैर साध के संग न भीगा पैर साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध संग नाही हो ताप साध कै संग तजै सव्याप अपे जाने साध बड़ाई नानक साध प्रभु बनियाई साध के संग न कब उतावै साध के संग सदा सुख पावै साध संग वस्त गोचर लहै साधु कै संग अजर सहै साध के संग बसै थान उचै साधु कै संग महल पहुँचै साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उदार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है साधु कै संग सो धन पावै जिस धन थी सबको वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साधु के संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साधु के संग सर्व थान गामु नानक साधु के संग सफल जनामु साधु के संग नहीं कचकाल दर्शन भेटत होत निहाल साध के संग कलूकत हरै साध के संग नरक पर हरै साध के संग इहां उहां सुहेला साध संग बिछुरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावै साध के संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध संग रसै साध के संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मनते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध के संग लगै प्रमीठा साधु कै संकट कर डीठा
साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साधगी महिमा भेद न जान है जिता सुने तिता बकिया न साधगी उपमा त्यो गुण ते दूर साधगी उपमा रही भरपूर साधगी शोभा का ना ही अंत साधगी शोभा सदा बेअंत साधगी शोभा उचते उची साधगी शोभा मूचते मुची साधगी शोभा साध बने आई नानक साध प्रभेद न पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अगर न पेखै सुबिन कोय नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख ब्रह्म ज्ञानी कह दृश समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कह तीरजेक ज्यों बसदा को खोदै को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यो पावक का सह सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैं न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह मन हुए परगास जैसे तारू पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उच ते उचा मने अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पाई नानक जिन पर व्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब परमाया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म त्यान ब्रह्म ज्ञानी कुप्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी कहना ही तंता ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हो सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संगहिता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खूजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाख्यर ब्रह्म ज्ञानी सर्व काटा गुरु ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक उरतारै जो अंतर नाम सर्व मैं पेखै भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार है नानक पर सगल निस्तार है अष्टपदि मिथ्या नाही रसना परस मन मैं प्रीत निरंजन दर्श पर त्रै रूप न पेखै नेत्र साध की टैल संसंग हित कर न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हरै मन की बास न मन ते टरै इंद्री जित पंच दुख ते रहत नानक कोट मध्य को ऐसा परस वैष्णु सो जिस उपर सुप्रसन्न विष्ण की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हो वै नहीं कर्म तिस वैष्णु का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग्राचे मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप तिड़ै व्रह नाम जपावै नानको वैष्णु परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मंति बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म सासु पापा मलक हुवै तिस भगवती की मत उत्तम हुवै भगवंत की टहल करै नित नीत मंतन अर्पै विष्णु प्रीत
हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम तुम्हें शुद्ध है राम नाम सार रस पीवे उस पंडित कह वधे जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नयावे वेद प्राण भूत सिमरत बूझै मूल सुखम मैं जन अस्तूल चौवर ना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना मैं जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत हुए सा सुन पावे जिनको ए कर कृपांतर उतारे पस प्रेत मूत पात्र को उतारे सर्व रूप काउकद नाम कल्याण रू मंगल गुण गाम काहु जुगत कितै न पाई धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास हो तिसका नाम सत राम दास हो आत्म राम तिसन दरी आया दास संतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जानु सो दास दर गै परवानु अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी पर सगल संगातमु दास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभ की आज्ञा तुम हितावै जीवन मुख सो कहावै तैसा हरख तैसा उसोग सदानंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उसमाटी तैसा मृत तैसी भिक काटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरता ईसाई जुगत नानको पुर कही जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ जित जित कर राख तैसा तिन नाऊ आपे करन करावन जोग प्रभावे सोई पुन होग पसरे वाप अंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रकाश पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पार अवार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट हुए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन भ्रम उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपिसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कवका विचार है कई कोट नवतन नाम त्यावै नानक करते कंत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभिगातम निकोर कई कोट पर दर्भ को हिरै कई कोट पर दुख न करह कई कोट माया श्रमाये कई कोट परदेश प्रमाये जित जित लावो तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रसपोगी कई कोट पंखी सर्प उपाये कई कोट पात्र वृख निप जाये कई कोट पवन पानी वैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट शशियर सू नखियत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत तार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस काम सातक कई कोट वेद प्राण सिमर तर शास्त्र कई कोट कीर्तन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच सब ते नेरे सब होते दूर नानका बलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म जीव मरे कई कोट भोजोनी फिरे कई कोट बैठत ही काहे कई कोट काल थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय पाणा तह तेरा की नानक सब किस प्रभ के हाथी कई कोट भय वैरागी राम नाम संग तिन लिवलागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हो आप सुख प्रसन्न नानक तेजन सदा धन धन कई कोट काणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होय अवतार कई जूत किन्नो विस्तार कई बार पसरो पासार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट किन्ने बहुपात प्रभ ते होय ब्रह्मा समाता कांत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवता तुम प्रगास कई कोट तत् के बेती सदा निहार है को नेत्री कई कोट नाम रस पीवे अमर पै सद ही जीवे
कई गुण नाम गुण गावे तुमरा सुख सह समावे अपने जन को सा सा सुमारी नानक कोई परमेश्वर के प्यारी श्लोक करण कारण प्रवे कह दूसर नाही कोई नानक किस बलिहार न जल थल मही अल सो अष्टपति करण करावन करण है जोग जो तिस भावै सोई हो किन मैं ताप तापन हारा अंत नहीं किछ पारा वारा हुक्मे धार धर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब मैं रिहा सुमाई प्रभावै मानु पथ पावै प्रभावै था पाथर तरावै प्रभावै बिन शास्त्र राखै प्रभावै था हर गुण भाकै प्रभावै था पथर उधारै आप करे अपन विचारै दोनों सिरे काप स्वामी खेलै बिकसै अंतर जामी जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानुख ते क्या होया वै जो तिस पावै सोई करावै किसके हाथ होए ता सब किछ ले जो तिस पावै सोई करे अनजान बिखिया मैं रचै जी जानता अपना बचै परमे भूला दै जिस तावै निमक मां चार कुंट फिरे आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक दे जन्ना मिले किन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवास जा की दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दिस प्रगटावै जाकु अपनी करै बख्शीशता का लेखा न गण जगदी जीव पिन सब तिस की रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवै दिख बढ़ाई इस काबल नाही सहात करन करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस पावै सोई फुंतियो कबू ऊंच नीच में बसै कबू सोग हर करंग हसै कबू निंद चिंद व्यवहार कबू उपकाश बयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानका मिला वनहार कबू निरत करै भाल कबू सोए रहे दिन रात कबू मां क्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवाल कबू होए वह बड़ राजा कबू पे घर नीच का साजा कबू अपकीरत में आवै कबू भला भला कहावै ज्यों प्रवड़ा कहते हुए ही रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबू होए पंडित करे बख्यान कबू मोहन धारी लावै ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिर साधक नु ज्ञान कबू कीट हस पतंग होए जी अनक ज्यों भरमे परमिया नन रूप ज्यों स्वागी दिखावै ज्यों प्रभावै तिवै निचावै जो तिस पावै सोई होए नानक दूजा वर्ण होए कबू साध संगत उपावै सस्थान ते बौर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास सुस्थान का नहीं विनाश सुमंत नाम रति करंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुरबान श्लोक सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्व गले अष्टपति जिसके अंतराज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जानै मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को करवंत कहावै जन्म रह भोजन प्रभावै धन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानकिया मुक्त आग्या सुख पावै धनवंता हुई कर गरबावै तृण समान कत्संग न जावै बहुलस्कर मान कुपर करे आस पल पीतर ताका हुए विनाश सब त्याव जाने बलवंत किन मैं हुए जाए पसमंत किसे न बदया अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जा का मिटै अभिमान सो जन नानक दर गए परवान कोट कर्म करै हो तारे श्रम पावै सगले बिरथारे अनिक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार अनिक जतन करा तुमने द्रवै हर थर गह को कैसे गवै आपस को जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्व गिरेंजा का मन होए कौ नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जानै मुझते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जब ए जानै मैं किछ करता तब लग गर्व जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लगनी चन्नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै सहस कटे लग कूटतावै तृप्त न आवै माया पाछै पावै अनिक भोग बिख्या के करै न तृप्तावै खप कमरै बिना संतोख नहीं कूरा जय सुपन मनोरथ वृथे सबका जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसै प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक कर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ का विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप रब सोए जो किछ गिनु सो अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बूझे देखे करै विवेका पहे का पहे अनेक मरण बिन से आवै न जाए नानक सद ही रहा समाए आप उपदेश समझे आप आपे रचिया सब कै साथ आप किनु अपन विस्तार
सब कछ उसका करने हार उसते भिन कहो किछ होए थान तनंतर एक सोए अपने चलताप करने हार कौत कर रंग आपार मन में अमन अपने माही नान कीमत कह न जाए। सत सत सत परम स्वामी गुरु प्रसाद किने वकियानी सच सच सत सब की ना कोट मध्य किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी काट काट सुनी श्रवण बकियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्री श्लोक संत शरण जो जन पर सो जन उतरणहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कह दुख नारजा कटै संत कह दुखन जमते नहीं छुटै संत कह दुखन सुख सब जाए संत कह दुख नरक में पाए संत कह दुखन मत होए मलीन संत कह दुखन शोभा तेहीन संत के हथे को रखै न कोई संत कह दुखन थान भ्रष्ट होई संत कृपाल कृपा जे करै सन नानक संत संग निंदक भीतर है संत के दुखन ते मुख पवै संतन कह दुखन कागजों लवै संतन कह दुखन सर्प जोन पाए संत कह दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन कह दुखन तृष्णा में जलै संत कह दुखन सब को चलै संत कह दुखन ते सब जाए संत कह दुखन नीच निचाए संत दुखी का था को नाहे नान संत पावे तो भीगत पाए संत का निंदक मात ताई संत का निंदक टिक न पाए संत का निंदक माह त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखिया अरदीन संत की निंदक को सर्व रोग संत की निंदक को सदा विजोग संत की निंदा दुख में दुख नान संत पावे तो उसका भी हो मोह संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसै का नहीं मित्र संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी माँ अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरे संत के दुख ना सुख ते टरे संत के दुखी को ना ही ठाओ नान संत पावे तां ले मिलाए संत का दुखी अद बीच ते टूटे संत का दुखी कितै काज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान परमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किच नाहि अपन बीजा पे ही खाहि संत के दुखी कवर न रखन हार नान संत पावै तां ले उभार संत का दुखियों बिल लाए ज्यों जल विहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै ज्यों पावक इंदर नहीं त्रापै संत का दुखी छुटै केला ज्यों बुआड़ तिलके तुमाहि दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सदमिथ्या कहत किरत निंदक का तुर ही पया नानक जो भावे सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी न मरे न जीवाई है संत के दुखी की पूजै न आसा संत का दुखी उचले निराशा संत का दुख न तृष्ट है कोई जैसा भाव है तैसा कोई होए पया किरत न मिटे कोई नानक जाने सच्चा सोई सब घट तिसके यो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उसत करो दिन रात किसै त्यावो सास गिरा सब कछ वरतै तिसका किया जैसा करी तैसा पोथिया अपना खेलाप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनु कृपा करे सब नाम दे बड़भागी नानक जन से श्लोक तजो से आनप सुरजन हो सिमरो हर हर राय एकास हर मन रखो नानक दुख भरम पौ जाय अष्टपदी मानु की टेक वृति सब जान देवन को एक कै भगवान जिसके दिए रह अघाए बहुत तृष्णा लग आए बारह रखे कुआप मानु कह किचना ही हाथ जिसका हुक्म सुख होए तिसका नाम रकंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोए मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसनामृत पीओ सदा सुहेला कर लह जियो नानो पेखटा कुरका रंगो सासंग बिनसै सब संग चरण चलो मार गोविंद मिटै पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक जल मथा बड़भागी ते जन जगवाहे सदा सुधार के गुण गाहे राम नाम जो करै विचार सेतन मंत गणी संसार मन तन मुख बोलै हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने तुद की सोजी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद अपन आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै सास संग हर हर जिस कहे तो सर्व रोग त्योहार जन रह तो अंदिन कीर्तन केवल बख्यान गृष्ठ में सोई निर्वाण एक ऊपर जिर्चन की आशा तिसकी कटी जम की फासा पार ब्रह्म की जिसमन भूख
नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर ब्रह्मन चिति आवे सो संत सहेला नहीं दुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डरे, जैसा सा तैसा दिष्ट आया अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद सब उजिया, जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सुखम सोई स्थूल, न के जन्म न किछ मरे अपन चलता भी करे। आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी धारी, सब सृष्टि आपे आप सगल में, अपने जूत रस्ताप ताप अवनासी, ना ही किछ कांड तारन तारे हो ब्रह्मांड। अलक अभे पुरख प्रताप अब जपाए त नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सोभावंत, सब संसार उदरह तिन मंत। प्रभु के सेवक सगल उदारन, प्रभु के सेवक दुख विसारन, आपे मेले कृपाल, गुर का सब जपय निहाल। उनकी सेवा सोई लागे, जिसनों कृपा करे बड़ भागे, नाम जपत पावे विश्राम, तिन पुरखोत्तम करमान, नानक तिन पुरखोत्तम करमान। जो किछ करे सुप्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सह सुभाय हुए सो हुए, करने हर पछाने सोई। जैसा प्रभ का किया जन मीट लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजे तिसमाय समाय, सुख निदान उनु बने आया। उसको आप दिनो मां, नानक प्रभ जाने को जान श्लोक, सर्व कला भरपूर प्रभिरता जाननहार, जा कै सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गाननहार गोपाल, सर्व जी आपे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिसते बिरता कोई ना आए। रे मन मेरे सदा हर जाप, अवनासी प्रभु आपे आप, अपन किया कछु न होए, जेसो प्राणी लोचै कोई, तिस बिना ही तेरा किछ काम। गत नानक जपे कर नाम, रूपवंत होए ना ही मोह है, प्रभु की जो सगल घट सो है। तनवंता होए क्या को गर्व है, जा सब किस तिसका दिया दर वै, सूरा जी को कहावे, प्रभु की कला बिना कहतावे। जे को हुए वह दातार, तिस दिन हार जाने गावार, जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सोजन सदा अरोग। जो मंदिर को थम है थम मनो, त्यो गुरु का शुद्ध मन है, सम मनो ज्यो पाखान आप चढ़त रह, प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है। जो अंधकार दीपक प्रगास, गुरु दर्शन देख मन होए बेगा, जो माँ ध्यान में मार्ग पावे, तिम साधु संग मिल जोत प्रगटावे, तिम संतन की बांचो तूर। नानक की हर लोचा पूर, मन मूर काहे बिल लाइये, पूर्व लिखे का लिखिया पाइये, दुख सुख प्रभु देवन हार, अवर त्याग तू तिसै चितार। जो कछ करे सोई सुख मानु, भूला काहे फिरे अजान, कौन बसाई तेरे संग, लपट रस लोभी बितंग। राम नाम जब हृदय माहे, नानक पत छेती घर जाहे, जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। ता जब मान लिहो मन मोर, राम नाम हृदय में तोर, लाद के संत संग चाल, अवर त्या विख्या जंजाल, तन तन कह सब कोई, मुख उजला हरदर गै सोए। हे वापार विरला वापार है, नानक ताके सद बलिहार है, चरण साधगी तो इत पियो, और साधु को अपना जियो। साधगी तूर करो स्नान, साधु पर जाइये कुर्बान, साध सेवा बट भागी पाइये, साध संगर कीर्तन गाइये, अनिक बेगंते साधु रखे, हर गुण गाय अमृत रचा के, उठ गई संत दरियाया, सर्व सुख नानक ते पाया। मृत को जीवालनहार, भूखे को देवता दार, सर्व निदान जाके दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाए, सबके जिसका करने जो, तिस बिंदु सर हुआ न हो। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब त्यूच निर्मले करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया। जाके मन गुरु की प्रतीत, तिस दिन आवै हर प्रवचीत, भगत भगत सुनिए त्यो लोई, जाके हृदय को हुई सच करनी, सचता की रहत, सच हृदय सत मुख कहत, सच ही दिल सच आयाकार, सच वर्त सचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। श्लोक रूप न रेख न रंग, के चित्र गुण ते प्रभ भिन्न, जिस हे बुझाई नानका, जिस हो वह सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन में राख, मानो की तू प्रीति आग, तिस्ते पर ना ही किच कोई, सर निरंतर एको सो, यापे बिना यापे दाना, गैर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निदान दयाल बख्शन, सा तेरे की चरणी पाओ, नानक के मने हो नराओ। मनसा पूर्ण सरना जो, जो कृपाया सोई हो, हरण परण जा का नेत्र होर, तिसका मंत्र न जाने हो, रन द्रु मंगल सजा कह सर्व थोक, सुनिए करता कह राज में राजयुग में, जो गीता महत विस्तृ विस्त में भोगी, त्याय त्याय भक्त सुख पाया, नानक तिस गुरु का किनंत न पाया। जाकी लीला की मित नाही, सगल देवारे वगाही, पिता के जन्म के जाने पूत, सगल पुरोही अपने सूत, सुमत ज्ञान ध्यान जन दे, जिन धन जास
ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿੰਦੇ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਸੇ ਤਿਉ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਭਰਮਾਈ ਜਨ ਮਰੈ ਫਿਰਿਆ ਵੈ ਜਾ ਊਚ ਨੀਚ ਕੇ ਸਥਾਨ ਜੈਸਾ ਜਨਾ ਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਪੇ ਕਰੇ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਵਿਚ ਕਿਨੋ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਭ ਬਨਾਸੀ ਇਕੰਕਾਰ ਨਾਨਾ ਚਲਤ ਕਰੇ ਕਿਨ ਮਾਹੀ ਪੂਰੇ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਈ ਨਾਨਾ ਵਿਦ ਕਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ ਸਭ ਘਰ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ ਜਬ ਜਬ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਕਰ ਨਾਉ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸੁਭ ਭਵਨ ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗੁਦਰੇ ਸੁਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੂਜਨ ਗਤ ਪਾਏ ਰੂਪ ਸਤ ਜਾ ਕਰ ਸਤ ਸਥਾਨ ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਏ ਸਮਾਣੀ ਸਤ ਕਰਮ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਇ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਤੇ ਤਨ ਜਨ ਜਾ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਤ ਨਿਤ ਬੁਝੈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ ਆਪੇ ਜਨ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ ਜਿਸ ਕੀ ਸਿਰਸੋ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਵਰਣ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਜੋਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭੈ ਬਿਸਮਾ ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਸਾਇਆ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੀ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ ਕੋਈ ਦਾਤੇ ਤੂੰ ਘੱਟ ਨਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਸੰਸਾਰ ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋਵਡ ਭਾਗੀ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਇੱਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕਾਤ ਸਚ ਜੁਗਾ ਸਚ ਹੈ ਪੇ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੇ ਸਚ ਅਸਤਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪਰਸਨਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਭਿਖ ਨਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤਿਆਵਨਹਾਰ ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਵਧਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭਕਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਣਤਾ ਬੁੱਝਣ ਹਾਰ ਗੁਰ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਜਿਸ ਮਾਏ ਸਮਾਨਾ ਬਸ ਮਾਏ ਲਈ ਬਸ ਗਡਾਈ ਤਾਕੋ ਭਿੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਬੂਝੈ ਬੂਝਣ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਪਾਲਨ ਹਾਰਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸੁਮਾਰੈ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰੱਖੈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਤ ਰੱਖੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਾ ਤਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਨਿੱਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਲ ਰੱਖੈ ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨ ਕੱਟਤਾ ਪੂ ਤਾਕੂ ਰੱਖ ਦੇਕਰ ਹਾਥ ਮਾਨੁਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਭਾਤ ਤਿਸਕੇ ਕਰਤ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ ਮਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰੱਖਾ ਸੋਏ ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੈ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਬਲ ਕਵਿੜਾਣੀ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿਉ ਮਨ ਤੰਤਰ ਪੀਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਤਿਸਕੇ ਚ ਅਵਰਨਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮੋ ਸੁਕਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਮ ਰਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ਮੰਤਨ ਨਾਮ ਮਹਿ ਨਾਮ ਸਮਾਨੀ ਉਠਤ ਬੈਠ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਉ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਤਕਾਮ ਬੋਲੋ ਚਾਚੇਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਨੀਦਾਤ ਕਰੈ ਭਗਤਾ ਤੁਮ ਕੈ ਚਾਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਜੋ ਹੁਆ ਹੋ ਸੋ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਤਿਸਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੂ ਤਿਸਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਇਕ ਨਾ ਜਾਣੂ ਆਠ ਪੈ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿ ਹਜੂਰੇ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਉਟਲੇ ਮੰਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿੰਜਨ ਦੇ ਜਿੰਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕਾ ਦਾਤਾ ਤਿਸਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤਿਸਕੇ ਦਰਸ ਪਾ ਮਿਟਾਵੈ ਵਰਸਿਆਨ ਸਗਲੀ ਛਾੜ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾ ਆਵਨ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ ਸਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਕ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸਕਾ ਨਾਉ ਤਿਸਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਦਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਸਤਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ
गुरु का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिख को नाम धन दे। गुर का सिख वडभागी हे, सतगुर सिख का हलत फलत सवार, नानक सतगुर सिख को जी नाल संवार। गुर कै गृह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस कहो कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन विच सतगुर कै पाव, तिस सेवक के कार्ज राज सेवा।

मत ले। बीस विश्वे गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुरु चरित हर नाओ, अनेक बार गुरु को बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जानू जन्म मैं पार ब्रह्म, एक आप नहीं कछ पर हूँ। सह स्यान लया ना जाइये, नानक ऐसा गुरु बड़ भागी पाइये। सफल दर्शन पेख दुख नीत, पर सत पर चरण गत निर्मल रीत। पेट संग्राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दर गय गवे। सुन कर वचन करन आघानी, मन संतोख आत्म पतियानी। पूरा गुरु क्यों जाका मंत्र, अमृत रिष्ट पेख हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भाव है तिस लय मिलाए। जे बाए कुछ तत्न एक, सतपुर पूर्ण विवेक। काहू बोलना पहुंचत प्राणी, अगम गोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई। अनिक भक्त बंधन नित करे, चरण कमल हृदय सिमर। सद बलिहारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हरस पावे जिन को, अमृत पीवे अमृत सो होए। उस पुर का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुण था। साठ पैर हर का नाम ले, सच पदे सेवक को दे। मोह माया कै संग न ले, मन में रखे हर हर एक। अंधकार दीप प्रगासी, नानक परमो दुख तै थिनासी। तब तुम्हारे ठाठ वरताई, अनंत पया दुख न ठे पाई। जन मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। पाओ चुका निर्भो हो, बसे सगुण ब्याज मंत्री खै नसी। जिसका साथ इन लिया, जिसका साथ इन कृपा धारी। साध संग जपना मुरारी, थित भाई चुके भ्रम गवन। सुन नानक हर जस रवन, निर्गुण आप सरगुण पियो ही। कला धार जिन सगली मोही, अपने चर प्रभाव बनाए। अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोए। सर्व निरंतर एको सोए, उत्पोत रव्या रूप रंग। भय प्रगासु साध कै संग, रच रचना अपनी कल धारी। अनक बार नानक बलिहारी। श्लोक

जाचक जन जाच प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्मिर श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गावो सा सा कर तुम्हें त्यावो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करूं प्रभु की नित नीत एको टेको आधार नानक मांगे नाम प्रभु सार प्रभु की दृष्ट महासुख हुए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रस रंग उपजै चाओ साध कै संग शरण परे आन सब त्याग अंतर प्रगास अंधिल विलाग बिडभागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवकी मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवकीनु सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन मरण दुख भ्रम गया इच पुनी सरदा सपूरी रब रया सत्संग हजूरी जिसका साथ इंदिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल न पाने सो क्यों बिसरै जे किया जाने सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन में राखै गुरु प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिकते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै गुरु पूरै तथे है बुझाया प्रभु अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एह काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाओ आप जपो अवरह नाम जपाओ भगत पाए करिय संसार बिन भगति तन हो सी चारु सर्व कल्याण सुख निदनाम मूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ मन तने अंतर ही सुहाओ नेत्र उपेक दर सुख होए मन विकसै सात चरण तोहे भगत न कै मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजै करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहा सर्व समाए प्रभ बख्शन दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद गुर कारण करतार भगत जना के प्राण दार जो जो जपै सो हुए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्वै कुंट मुक्त मोख पाए एक निमक हर के गुण गाय अनिक राज भोग बडियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास लोक सार गुण

फिर जाप अष्टपदी। जब कार्य कछ न दृष्टिता, पाप पुन तब कहते होता। जब धारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध के संकमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरक सो कह किसे व्यापत। जब अपने आपा पार ब्रह्म, तब मुह का किसोत परम। अपन खेला वर्ती जा, नान करने हार न दूजा। जब होवत प्रभु केवल तनी, तब बंद मुक्त को किसको गनी। जब कह रगम पार, तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभु सह सुभाए, तब शिव सुक्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जो तरे, तब कवन निडार कवन कत डरे। अपन चलता करने हार, नानक ठाकुर रघु अपार। अविनाशी सुखा अपनासन, तय जन्म मरण कहो कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभु सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अभिगत गोचर प्रभु का, तब चित्र गुप्त किच पूछ लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गा दे, तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे। अपन आप आपिय चर जा, नानक अपन रूप आपिय पर जा। जय निर्मल पुरख पुरख।

करते का नहीं सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कलाया पह परवीन, तह बेद कतेब कहा कूचीन। जब अपन आप आपुरता रहे, तो सगन अपसगन कहा विचार है। जय अपन ऊच अपन आप नीरा, तय कौन ठाकुर कौन कही है चीरा। विषमन विषम

अष्टपदी। आप कथे आप सुनने हार, आप एक आप विस्तार, जाति सुपावे तां सृष्ट उपाय, अपने पाने ले सुमाए, तुम ते भिन्न नहीं किच होए, अपन सूत सब जगत परोए, जाकु प्रभु जी आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए, सो सब दर्शी तत् का बेता, नानक सगल सृष्ट का जीता, जी जंतर सबता कै हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ, जिस राख्या तिस कोय न मारै, सो मुआ जिस मनो बिसारै, तिस त जबर कहा को जाए, सब सिरे के निरंजन राय, जी की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ, गुण निदान बेअंत अपार, नानक दास दा बलियार, पूरन पूरहे दयाल, सब उपर होवत कृपाल, अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप, प्रतपाल जीअन बोपात, जो जो रचियो सो तिसै त्यात, जिस भावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक इक जानिया, जन लागा हर एक नाई, तिसकी आस न वृत्ति जाए, सेवक को सेवा बन आई, हुकम बूझ परम पद पाई, इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसिया निरंकार, बंधन तोर पै निर्वैर, वंदन पूछे गुर के पैर, ये लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रव्यापे मेले, साह संग मिल करो आनंद, गुण गावो परमानंद, राम नाम तत करो विचार, दुर्लभ देखा करो उधार, अमृत वचनर के गुण गाओ, प्राण तरण काय है सुहाओ, आठ पैर प्रपिको नीरा, मिटे ज्ञान विनसै अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ, हालत पलत दोए लेहु सवार, राम नाम अंतर उतार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै ते साच परिखिया, मंत्र नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पहु जाए, सच व्यापार करू व्यापारी, दर कहने वह खेप तुम्हारी, एक काटेक रखो मन माहे, नानक बहुर नया वह जाहे, किस्ते दूर कहा को जाय, उबरे रख नहार त्याय, निर्भउ जपै सगल भउ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभ राखै तिस नाहि दुख, नाम जपत मन होत सुख, चिंता जाय मिटै अहंकार, तिस जन को कोई न पहुँचनहार, सिर उपर ठाडा गुर सूरा, नानक ताके कारज पूरा, मत पूरी अमर जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रदान, जिस मन बसै सुहोत निहाल, ताके निकट नयावत काल, अमर पय अमरा पद पाया, सासु नानक हर त्याया, श्लोक ज्ञानंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास, अष्टपदी। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समग्री एक सकट माही, अनेक रंग नाना दृष्टाही, नौ निदमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम, सुन समाद अनहत तैनात, कह न जाई अचर्ज विस्माद, तिन देखिया जिसे आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट व्याप रहा भगवंत, तरन मा

प्रतिपाल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंत दह दिसै समाहे। तिस्ते भिन नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद प्राण सिमृत मैं देख, सस्यर सूर नक्षत्र मैं एक। बाणी प्रभु की सबको बोले, आप डोल न कब हूं डोले। सर्व कला कर खेल खेल, बोल न पाइये गुने अमोल। सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत, तारे हो स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन में है इहो विश्वास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म। संत जना सुने शुभ बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन। चिन जाता तिसकिए रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो हुई सोई सुख माने, कर्ण करावन हार प्रभ जाने। अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस भावै ता करे विस्तार, तिस भावै ता एक अंकार। अनिक कला लखी नह जाए, जिस भावै तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कही है दूर, आपे आप आपरपूर। अंतरगत जिसाप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्वभूता वरतारा, सर्व नैना पेखनहारा। सगल समग्री जाका तना, अपन जासु आप ही सुना। आवन जाने खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। सब कै मद अलिप्त रहे, जो किछ कहना सो आपे कहे। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता ले समाए। इस्ते होए

मन अंतर की उतरे चिंद आस नित त्याग उतरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरहो हार

सुखमनि सुखमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

माते गजान के मान मलैया, गाड़े गड़ान को तोड़न हार, सो बात नहीं चक चार लवैया। साहेब श्री सबको सिर नायक, जाचुक अनेक सो एक दिवैया। दानव देव फनेंदन साचर, भूत भविख भवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में, सब थाप थपेंगे। उन प्रतापन बाढ़ जैत धुन, पापन के बहु पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरै जग, सत्र सवै अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र नराथप, जौन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट इस नानक जादिक दान, अनेक सुअंबर साज भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर बिसन सची पत, अंत फसे जम फास करेंगे। जे नर श्रीपत के प्रस हैं पाग, ते नर फेर न देह तरेंगे। कहां पयो जो दो लोचन मूंद कह, बैठ रहे हो बख ध्यान लगायो। नाहत फिरियो लिए सात समुद्रन, लोक गयो परलोक गवायो। बास कियो बिख्यान सो बैठो कह, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साच कहो सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज तरयो सिर, काहू लै लेंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर आवाची दिशा में, काहू पशाह को शीस निवायो। को बुतान को पूजत है पास, को मिरतान को पूजन तायो। कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती, चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा। पूरन होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सबै तुम कावाओ। आप हाथ दय मोहे बचावाओ, सुखी बसै मोरो परिवारा। सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दय करियै। सब बैरन को आज संग्रियै, पूरन होए हमारी आशा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम है शाड़ कोई अवर ना त्याऊं। जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दय मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेव कियो, बेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जचन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो। घाट घाट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना है, घाट घाट के पट पट की जाना है। जब उद करक करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब अकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा।
ताको कर पाहन अनुमानत महामूड काश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार काचीन तनह पेव।

बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पवे देहो दर्श मन चाओ भगत एह मन ठहरावै बले उचराग अंधियार मैं सब कल उधरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हाँ।

कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही करते रह। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सा पियाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विट्टो हो, जिह दिया ए वडियाइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तितकार सपागै कार, सपागै शब्द वाजे कला जित कार, तारिया पंच दूत दवस कीते, काल कंटक मारिया धुर

अन दिन नाम वखाण गुण संग्रह अवगुण विकण आपे आप पछाण गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे शब्द रस पीजे नानक हर की भगत निराली गुरमुख।

से पुरख बैरागी राम, से जन बैरागी सच लिव लागी, आपना आप पछाणिया, मत निचल अत गूढ़ी, गुरमुख सहजे नाम वखाणिया, एक कामन हितकारी माया मोह प्यारी, मनमुख सोए रहे अभागे, नानक सहजे सेव है गुर अपना, से पूरे वड भागे, वड हंस महला तीजा, रतन पदार्थ वणजी है, सतगुरु दिया बुझाई राम, लाहा लाभ हर भगत है, गुण मह गुणी समाई राम, गुण मह गुणी समाई जिस आप बुझाए, लाहा भगत सह सारे, बिन भगति सुख ना होई, दूजे पत खोई, गुरमत नाम अधारे, वखर नाम सदा लाभ है, जिसनो एक वापार लाए, रतन पदार्थ बन जी है, जा सतगुर दे बुझाए, माया मू सब दुख है, खोटा इहु वापारा राम, कूड़ बोल बिख खावनी, बहुवदै विकारा राम, बहुवदै विकारा सहसा इहु संसारा, बिन नावै पत खोई, पड़ पड़ पंडित

सब दुख है, खोटा इहु वापारा, खोटे करे सब परखियन, तित सच्चे कै दरबारा राम, खोटे दरगह सुटियन, ऊभे करन पुकारा राम, ऊभे करन पुकारा मुगद गवारा, मनमुख जन्म गवाया, बिखिया माया जिन जगत पुलाया, साचा नाम न पाया, मनमुख संता नाल वैर कर दुख खट्टे संसारा, खोटे खरे परखियन, तित सच्चै दरबारा राम, आप करे किस

अतमूल अपारा राम, अतमूल अपारा सचवा पारा, सचवा पार लगे वडभागी, अंतर बाहर भगती राते, सच नाम लिव लागी, नदर करे सोई सच पाए, गुर कै शब्द विचारा, नानक नाम रते तिन्ह।

सुपाई बिख का कीड़ा बिख स्यों लागा बिस्टा माहे समाई जो तुर लिखिया सो एक मावै कोई न मिटन हारा नानक नाम रते ते

जत सत संयम कर्म कमावै बिन गुरगत नहीं पाई। नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवै हर सरनाई। जो हर मत दे सा उपजै

जप हर हर नाम कमल परगासे, हर नाम नमंग निद पाई। हो मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई। हर नाम वडाई सतगुर ते पाई, सुख सतगुर दे।

तिनका दुख भरम भौ भागा सेवक भाए मिले वडभागी जिन गुर चरणी मन लागा कहो नानक हर आप मिलाए मिल सतगुर पुरख सुख होई गुर जीवड़ दाता मैं अवर न कोई वडहंस महला चौथा हौ गुर बिन करी निमानी राम जग जीवन दाता गुरमेल समानी राम सतगुर मेल हर नाम समानी जप हर हर नाम त्याया जिस कारण हो ढूंढ टुड़ेंदी सो सज्जन हर घर पाया एक दृष्ट हर एको जाता हर आत्म राम पछाणी हौ गुर बिन करी निमाणी जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मिलाए राम तिन चरण सरीव है हम लागह तिन कह पाए राम हर हर चरण सरीव है तिनके जिन सतगुर पुरख प्रभ

पे पुरख निरंजन सोई, वडहंस महल्ला चौथा। हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम। तिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम। गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर विनाशे। सतगुर सेव परम पद पाया, हर जपया सास गिरासे। जिन कौ हर प्रभ कृपा धारी, ते सतगुर सेवा लाया। हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया। मेरा

जप हर हर जप हर हर नाम मेरे मन भया मेरे मन भाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया आरोगत भये शरीरा अन दिन सहज समाध हर लागी हर जपिया गहर गंभीरा जात अजात नाम जिन त्याया इन परम पदार्थ पाया जप हर हर नाम मेरे मन पाया हर तारहु कृपा लेहु हर तारहु कृपा कर कृपा।

राम सखाई, जन नानक राम उपाइया, देह पावो जीन बुझ चंगा राम, चढ़ लंगा जी बिखम प्यंगा राम, बिखम प्यंगा अणत तरंगा, गुरमुख पार लंघाए, हर गोहित चढ़ बड़ भागी लंघे, गुर खेवट शब्द तराए, अन दिन हर रंग हर गुण गावे, हर रंगी हर रंगा, जन नानक निर्वाण पद पाया, हर उत्तम हर पद चंगा, कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान।

मन जिनै गुरमुख जीतिया, अकड़ू कढ़ावै शब्द पावै, अप्यो हर रस पीतिया। सुन श्रवण बाणी गुर बखाणी, हर रंग तुरी।

जित हर प्रभ जापै सा धन धन तुखाई आराम। जित हर प्रभ जापै सा धन सा बासै तुर पाया किरत जुड़ंदा। चढ़ देहड़ घोड़ी बिखम लंघाई मिल गुरमुख परमानंदा। हर हर काज रचाया पूरे मिल संत जना जंज आई। जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वाधाई। वड हंस महल

सिख सेवक सब पुंचन लगे हो सतगुर कै कुर्बाना निर्भाओ भए खसम रंग राते जमकी त्रास बुझाए नानक दास

हर रस अगाई सहज समाए घट घट रमैया जाते से सज्जन संत से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाणे कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कै सद कुरबाणी। सलोक देह अंधारी अंध सुन्नी नाम विहूनिया नानक सफल जनामू जय घट उठा सच तनी चंत।

मिल जल जल है खटाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो जो निता प्रति सतगुरु जी की अमृत बाणी दे चल रहे श्री सहज पाठ नाल जुड़ते हो। गुरुदेव जी कृपा करन, पढ़ी सुनी बाणी दा भाव सू संगत नू सू परिवारां नू सतगुरु जी प्रदान करन। अगाध बोध बाणी पढ़दे आं, बेअंत बेअंत भुल्लां हो गईआं हन, आप संगत कृपा लो सतगुरु बख्शन योग ने जी, भुल्लां ना चितार दे फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

रंग के त्रैगुण ते प्रभु भिन्न जिसे बुझाए नानका जिस हो वह सो प्रथम परी अबनासी ब्रह्मन में राग मानु की तू प्रीतिया जिससे प्रह ना ही किस को सर्व निरंतर एक सोई आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गई सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंदु साध तेरे की चरणी पाओ नानक मन ए उनरावु ममता पूर्ण तरना जोग जो कृपाया सोई होग हरण परन जाका नित्र फूर जिसका मंत्रण जान होर आनंद रूप मंगल सद जाक सर्व थोक सुनिया करता कर राज में राज योग में जोगे तप में तपी सर्गिस्त में पोगे त्याए त्याए भुगते सुख पाया नान चिस्पुरक का किरे अंत ना पाया जाकी लीला के मत नाही सकल देव हरे हरे अवगाही पिता का जन्म के जान पोत सगल प्रोही अपने सूत सुमत ज्ञान त्यान जिन दे जनदास नाम त्यावे से तय गुण में जाको परमाई जन्म

रंग नाना भेख ग्रह एक रंग नाना विदकिनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलित करे किन बाहे पूर रहो पूरन सब ठाए नाना बिदकर बन तुम नाई अपने कीमत आपे पाए सब गर चिसके सब चिसके ठाओ जप जप जीव नानक हर नाओ नाम के दारे सगले जंत नाम के दारे खंड ब्रह्मंड नाम के दारे सिमृत वेद पुराण नाम के दारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के दारे आगाज पाताल नाम के दारे सगली आकार नाम के दारे प्रिया सब पवन नाम के संगुद्री सुन सरवन कर कृपा जिस आपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रदान करतूत सत सत जाके बाणी सत पुरख समाय समाणी सत कर्म जाके रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करने निर्मल निर्मले जिसे बुझाए तिसे सब बलि सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नान गुरु ते पाई सत वचन सारु उपदेश सत्य जंजा कर दे प्रवेश सत निरत बुझे जे कोये नाम जपत ताके गत होए आप सत किया सब सत आपे जाना अपने मित गत जिसके सृष्टि करने हार आवरना बूझ करते विचार करते कीमत ना जाने किया नानक जो तिरपावे सो वर्ती आ बेसमान बेसम भय बेसमार जिन बुझिया तिसाया स्वार प्रभु का रंग राच जंद रहे गुरु का वचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जाकर

नारद सुसेवक साथ साथ समारे अपने जन का पर्दा टाक अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रख ताके गतबिंद कोई ना लाक प्रभु के सेवक को ना पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंच थे ऊंचे जो प्रभु अपने सेवा लाया नारायण सो सेवक दैन जिस प्रगटाया नीचे कीरी मैं कल रख पसम कर लश्कर कूट लाख जिसका साच न काटती आप ताको राकत दे कर हाथ मानस जतन करत वो बात जिसके करता बिर थे जात मारन राख वरना कोए सर्व जिया का राका सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभु अलक विराणी बारंग बार बार प्रभु जपिया पी अमृत मंत्र रपिया नाम रतन जिन गुरु मुख पाया जिसके चवर नाही दिष्टाया।

0: समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदकाम बोलो जस जे बाजंद्रात प्रभ अपना जन की नी रात कराह भगत आत्म के चाई प्रभ अपने सो रह समाई जो होवा होवत सो जान प्रभ अपने का हुक्म पहचान जिसकी महिमा कौन बकानू जिसका गुण का एक न जानू आठ पहर प्रभ स हजूरे कहो नानक सही जन पूरे मन मेरे तिन की ओट लहे मंत्र अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता जिसके शरण सर्व सुख पावे जिसका दर्श सब पाप मिटावे अवर सियान सगली छाड़ जिस जन के तो सेवा लागू आवन जानना हो भी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलो सत पुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाओ तिसका संग सिख उदर नानक हर गुण गावी सतगुर सिखी कृ प्रतपाल सेवक को गुरु सदा सिखी के गुरु दुरमत मलही रह गुरु पत्नी हर नाम उतरा सतगुर सिके बंधन काट गुर का सिख विकार ते हट सतगुर सिखो नाम तंदे गुर का सिख बड़भागी है सतगुर सिका हालत पलत सवार नानक सतगुर सिखो जी नाल समार गुर के ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सहै आपस को कर कचना जनावै हर हर नाम हृदय सदियावै मन बेचै सतगुर के पास जिस सेवक के कार्य राज सेवा करत हुए ने कामे जिस को होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर के मतले बीस विश्वे गुरु का मन माना है सो सेवक परमेश्वर के गत जाना है सो सतगुर जिस हृदय हर नाऊ अनेक बार गुर को बल जाऊ धर्म निदान जिये का दाता आठ पहर बार ब्रह्म रंगलाता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक है आप नहीं कच
1: अरे सॉरी।

प्यारी साध संग जीओ सुपाग परी जोड़ी ने बड़े ही प्यार दे नाल सतगुरां दे द्वाले चार प्रकर्मा करके जिंदगी पर एक दूसरे नाल साथ निभाउण दा प्रण कीता है। सतगुरु जी कृपा करन, बख्शिश करन, जोड़ी दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखन, दोनों बच्चियां दी अते दोनों परिवारां दी आपस विच बण आवे। सतगुरु चढ़दियां कलां बख्शिश करन, बच्चियां दी झोली विच सतगुरु जी गृहस्थ जीवन दे सारे सुख पा के नवाजना करन। आनंद कारजां दी मर्यादा दे अनुसार दो शब्द होर गायन करके पांच सत मिनट विच आप जी पासों खिमा दे जाच कहवांगे जी। प्यार सहित आओ सारी संगत मिल करके इन्हां शब्दां दा गायन करिए। व्याह होआ मेरे बाबुला, गुरमुखे हर पाया, अग्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान प्रचंड बुलाया।